0: आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सर्वोत्तम सुरक्षा देती है। आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से इसकी बुकिंग करें। healthdirect.gov.au/nswfluvaccine पर जाएं।
1: Something's changed with mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
2: Station sponsor.
3: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
4: Alive 90.5.
5: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और आज मैं बात कर रही हूँ सुकृति नारायणन के साथ और ये अभी हमें बता रही थी लूनार मिशन के बारे में शक्ति सैट उसके पहले आजादी सैट था तो ये एक ऐसा सपना है जो अभी साकार हो रहा है और अच्छा मुझे बताइए कि अभी ये लड़कियों का ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ आप लॉन्च कर रही है क्या ये मून में जाएगा क्या है व्हाट इज हाउ डज इट वर्क व्हाट इज इट सपोज टू capture.
6: So this project works in phases, mm-hmm. right? So first phase hai onboarding the students and they're starting the curriculum. Mm. And abhi ek milestone hai where InSpace, ISRO's

0: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ। और मैं आज बात कर रही हूँ सुकृति नारायणन के साथ, और ये इतनी दिलचस्प बातें बता रही हैं लूनार मिशन के बारे में जो भारत में हो रहा है और भारत का इनिशिएटिव है। और मुझे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जितनी बार बोलू उतना कम लगेगा कि ये जो इनके साथ बात करके मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है। मुझे, आई कैन ओनली इमेजिन कि आपको कितना गर्व महसूस होता होगा। और जो इंडिया में ये प्रोजेक्ट को इसकी देखरेख कर रहे हैं उनको कितना गर्व महसूस होता होगा, क्योंकि इतना जो सिखाना इतने कम समय में, वो भी देखिए ये सैटेलाइट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इट इज अ बिग प्रोजेक्ट, राइट? इनको लड़कियों को समझाना सिखाना, और ये छोटी लड़कियां हैं, 14 to 18,
1: yes.
0: है ना? तो ये सब करना छोटी बात नहीं है। जैसे छोटी छोटी आइडियाज भी हम लोग देते हैं ना, उसमें इतने सारे रुकावटें आ जाती हैं। तो मेरे को, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ कितनी रुकावटें आई होंगी, लेकिन इसका ना हम एक एपिसोड बना सकते हैं कि भाई कितनी रुकावटें आई थी और क्या हुआ था। लेकिन हम आज नेगेटिव चीजें बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें बात करेंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ चुका है, फेज वन, फेज टू, अभी फेज थ्री भी आएगा, और लड़कियां इंडिया जा रही हैं एक हफ्ते के लिए। तो इट इज एन अमेजिंग मिशन, और मैं जानना चाहूंगी आपसे बाद में कि वो एक हफ्ता कैसा गया और लड़कियों ने क्या किया। होपफुली वो, अगर वो लड़कियां हमारे साथ बात करना चाहें अलाइव में, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी।
1: एक्सलेंट, डेफिनेटली डू। एंड यू नो, जब आप बार बार बोलते हैं आप इतना गर्व महसूस हो रहे हैं आपको, दैट इज व्हेन आई फील इट फील्स अनरियल, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल व्हेन यू have when you're part of the mission, you've given it your all. And when we see people around us feeling happy, we all kind of feel numb, because we've played our part. The mission chooses people more than anything, because we've seen a lot of backlashes, a lot of, you know, things, and I'm so grateful for everything, because all those no that we heard more than yes, those are very important for us to be where we are here, like today. And your experiences shape you, right?
0: So whatever you went through, that is what will shape how you act and react or be proactive about in some cases, right?
1: And to be honest, it's a spiritual journey. And it is in a total surrender state, because the mission, we are all instruments in this mission. There are thousands of people involved. And I would just jokingly say, it is like your movie, right? Where you have an actor, actress working there, but there are thousands of people behind. This, the same thing. I sometimes think, okay, I have the gift of the gab, and I can speak, I can present the mission so well.
0: Yeah.
1: And that is what is happening here. But there is so much of work happening across, and I can't thank. And interestingly, it's common people's mission. So every single community is involved, every single common people involved in spreading the word. And, you know, many people, they can't relate it to a space mission. So they'll say, oh, so she's running the solar mission, you know, and, but the intentions are pure. They wanted to introduce. And one of them, they introduced saying, Suk is running a great meditation retreat. I'm like, what? Because I said 108, right? But they wanted me to introduce. Oh, intention. So what I observed from that was the space word is not very common. Many people have felt offended when I said, I'm heading a space mission. They're like, this is rude. You can't talk to me like that.
0: Yeah.
1: Because I've not heard it. I thought, no, they asked, what do you do? And I said, I head a space mission. They're like, you can't talk to me like that. You know, it's very disrespectful. So I have to run to my car, show my card. They're like, oh, we've never seen a person like this. I'm so sorry. I thought, aap mazak uda rahe hai mere ko na.
0: Oh, jaise matlab distance, space, aise soch liya
1: hai. Nahin, when I say space, like they thought, yeah, you know, you're being disrespectful.
0: Okay.
1: And then my husband said what I'm doing at his office. He said, good joke, we have a good sense of humor. Then another colleague said, no, you know, that's what Suk actually does. So breaking all those, now we're taking it to common people. We're getting them to know about it. So I think that is, now everyone are celebrating. They've taken it as their mission. So I think that is our real success.
0: No, that is a victory story. And I am really telling you, this is something that I want to hear more about. I really want to understand from the girls' perspective as well, you know, ki unko kya laga ek, aajkal jaise India ke bare mein bahut sari cheezein batai jati hain, achhi buri dono chal rahi hain, right? To iske beech mein itni sari ladkiyan from worldwide are going to India to spend a week there to learn, and you know, India have the oldest university. Nalanda University was like the oldest university ever known to man, right? So we've always been pioneers in education.
1: Yes.
0: So isko hum ek naye disha mein leke ja rahe hain. Jo mujhe sun iske bare mein main definitely aur baat karna chahungi aapke sath. Lekin aaj ka ek ghanta almost khatam hone ko aaya hai. To aur main aapse kuch aur bhi baat karna chahti thi, lekin shayad abhi nahi. Aapke aane ke baad baat karenge hum iske bare mein. Aur definitely aur janna chahungi ki kya ho raha hai aur is ye mission kaisa gaya, iska jo phase 3 hota hai wo kaise hota. तो आपके साथ टच में रहने में मेरी भलाई है. लेकिन आपने आज इतना टाइम निकाला और मेरे से आके बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ऑल द बेस्ट, तहे दिल से ऑल द बेस्ट फॉर द मिशन टू बी द बिगेस्ट सक्सेस एवर. थैंक यू सो मच सो फॉर ज्वाइनिंग मी.
1: माई प्लेजर वीना. लिसनिंग टू दिस मेक्स माई हार्ट फिल्ड विद हैप्पीनेस. प्रॉमिस टू मेक यू ऑल मोर प्राउडर.
0: थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सुनने के लिए. अगर आपके किसी के पास सुकृति के लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे जरूर भेजें और हम और बात करेंगे. एक और गाने के बाद वापस आते हैं. लेकिन थैंक यू सो मच आज के इंटरव्यू सुनने के लिए.

0: Thanks for listening to Alive 90.5. If you enjoy the service Alive provides to the community, then why not become a member of the station today? Head across to our website, alive905.com.au, scroll down the page and click on the general volunteering link to download a membership application. Become a voice of the community with Alive 90.5.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं. आपके लिए कौन सा टीका सही है? इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें.
3: Adriano Colucci Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Colucci Funeral Services, always with you. 9604-9604. Station sponsor.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. और आज मैंने बात किया सुकृति नारायणन से और इनसे बात करके मुझे सीरियसली एक इनका जो लूनार मिशन है इसके बारे में सुन के 12,000 लड़कियों को स्पेस के बारे में सिखा रही है, सैटेलाइट बिल्ड करना सिखा रही है. ये एक बहुत ही अमेजिंग मिशन लगता है मुझे. ये जब आई थी स्टूडियो में और इनका जो बायोडेटा मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि बाप रे, इतनी कम उम्र में इतना अचीव किया है इन्होंने. तो 135 इयर्स गिल्ड टीचर्स गिल्ड अवार्ड में पहली बार किसी इतनी यंग लेडी को ये अवार्ड मिला गया है. उनसे इसके बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सिर्फ लूनार मिशन के बारे में बात करूं, वो स्टूडेंट्स के बारे में जब बात करूं जो यहाँ से जा रही हैं. तो मैंने उनकी बात मान ली लेकिन मैंने उनको बोला है कि हम आके वापस बात करेंगे उनके बाकी अचीवमेंट्स के बारे में. तो इनको मिलके ना मुझे जब मैं मिशन मंगल देख रही थी या फिर लगान देखते हैं ना, जब एकदम जानते हैं क्या होने वाला है लेकिन वो जो हैप्पीनेस, वो जो अंदर से खुशी मिलती है, वो उसका एहसास हुआ. और थ्री इडियट्स का वो वाला डायलॉग याद आया जहां चतुर ने गलत कहा था स्टेज पे, लेकिन मैं सही वाला डायलॉग यूज करूंगी. हम जिस देश में जाएंगे उस देश में चमत्कार करेंगे. तो सुकृति, आपको तहे दिल से ऑल द बेस्ट कि आप जहां भी जाएं, जो भी करें, आप चमत्कार करें. एंड आई होप वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड चीयर यू इन दिस होल मिशन. एंड टू एवरी लिसनर ऑफ इंडिया कनेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टूडे. एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. एंड थैंक यू एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक.